आज हम गुरु नानक के शरीर के दर्शन करते उनके चरणों की छो प्राप्त होती, इतने बड़े भाग होते हमारे। लेकिन गुरु नानक शरीर में नहीं है तो कुछ आनंद कम आता है। गुरु अर्जन देव जी इस वेद को खोलते, भाई गुरु नानक की वाणी तुम प्यार से पढ़ोगे, श्रद्धा से वाणी के दर्शन करोगे तो उसमें से ही गुरु नानक के दीदार ऐसा लगेगा जैसे प्रत्यक्ष गुरु नानक के वचन सुन के आए।

जागता है, गुरु सूरज के माफिक है। ये बात अलग है, हम लोग खिड़कियां और दरवाजे बंद कर लेते हैं। ऐ सूरज तुम्हारी रोशनी नहीं चाहिए, फिर कहें सूरज हमारे घर में नहीं आया, भाई भूल तेरी। सूरज तो हाथ दे रहा है, दस्तक दे रहा है, तेरे दरवाजे पर खड़ा है, लेकिन तुमने दरवाजे बंद कर रखे। गुरु नानक तो तेरे दरवाजे के बाहर खड़ा है, पर तुमने अपने दिल के दरवाजे बंद कर दरवाजे खोल।

अदेव जच्छ गंधर्व तुर्क हिंदू न्यारे न्यारे देशन के देश को प्रभाव है न्यारे न्यारे।

राग कल्याण कुपाली दियां सुरावलियां विच सर्व दुखां नूं निवारण वाले पार ब्रह्म परमेश्वर प्रति इउं जाचना कर रहे ने।

राग प्रभाती दे इस रंजक स्वरूप विच भगत कबीर जी उस खालक दी नूरानी होंद संबंधी समुची लोकाई नू उपदेश दे रहे ने। लोगा परम ना भूलो भाई, खालक खलक खलक मह खालक, पूर रहे हो सब ठाई।

बड़ी मुद्दत तो बाद यह जन्म प्राप्त हो गया। भावें पढ़न विच आया पे वह फलां जन्म में सी, फिर मुड़ के आ गया, फिर आ गया, उसनों फिर जन्म पै गया, मिल गया, तो उन्हों थोड़ी जी खबर अपने पुराने जन्म की है। यह बारहों पढ़िया मैं, लेकिन गुरु ग्रंथ साहिब सच्चा पातशाह अटल फरमान असि तो गुरु साहब देने आए हैं ना, इन्हों फरमान इन्होंने वचन प्रवचन सतगुरु वचन तुम्हारे अटल ने। वह कहते हैं कबीर मानस जन्म दुलंब है होए ना पारे बार, अगे फिर मिसाल है जो मन भर पाके होएंगे और ना लगे डर, दोबारा यह जन्म प्राप्त नहीं होना, भाव मानस जन्म नहीं मिलना। मानस जन्म दुलंब गुरमुख पाया। एक बंदे के सिर में खारिश बहुत है, बहुत तकलीफ है, दोनों हाथों नो खनू ही जाता है, कई बार तो खनूद्या नाखन खून भी लग जाता है, पर परेशान बड़ा है। आम एक खान है कि खंघ और खुरक कि लकोलो ये प्रगट हो ही जाते। किसी सियाने ने बंदे ने उन्होंने कहा बड़ी तकलीफ में आ तू, इहदा कोई प्रबंध कर, कहिंदा सुनो वड्डिया ज्ञानिया इहदा तां कोई नहीं, मैं चल लूं, मैनू यह दस भी अज इस नेर कोठरी विच मैं बढ़ गया हां, इह तों बाहर किवें निकला, एडा महल ते इहदे विच नेर कोठरी विच मैं बढ़ गया, मेरे कर्मां ने वार दिता है। क्योंकि गुरु ग्रंथ साहिब सच्चा पातशाह बारह माह के आरंभ में कहते हैं इंसान देख तू अपने वाल दो कारण करके तू प्रभु नाल विछड़ गया है। वो कहने लगा इंज कर, इस महल की जिस कोठी वड़िया है तेरे सज्जे हत्थे दी कंध है, कंध नाल हाथ ला के तुरिया रह। बापू जी भेजदा ना बुलाया कर इत बैठ के खिमा करा है, मैं भी सॉरी मंगता जी। हां जी तेरे सज्जे हत्थ दीवार है, वो कहिंदा मैं नेत्रहीन भी हां। वाहिगुरु जी कहिंदे ने हम अंधले अंध विखे बिखराते, असी अन्ने हां, भाव साडा ज्ञानवान कोई नहीं, साडे ज्ञान दे और विरों दे चक्षु नहीं हां। मैनू दस कहिंदा ले मैं तेरा हाथ दीवार नाल लवा दिना, ऐ तुरिया रह तुरिया रह तुरिया रह तुरिया रह, जिथे दरवाजा आओ ना उस झट बाहर निकलने। पर इहदे माड़े भागां नूं इन हाथे ला लिया, पर जिस वेले दीवार दे कोल आउण लगदा छड़े ना उसने खुर करन लग पैंदा, तुरिया तुरिया दरवाजा निकल जांदा, दरवाजा निकल गया। इह दो चार चक्कर मारे दरवाजा निकल गया, बेचारा अंदर तड़फ के मर गया। हुण तरीका यही है भई इस जन्म विच आके सतसंग जी मनुखा जन्म विच आके प्रभु का सिमरन बारम बार बार प्रभ जपिए पी अमृत मन तन तरपिए, इथों की बाहर निकलना इसे जन्म। ऊट नु कुछ नहीं पता, शेर नु कुछ नहीं पता, कुत्ते नु कुछ नहीं पता। देखो जिन्हें ज्ञानी ने, जिन्हें विज्ञानी ने, जिन्हें महापुरुष ने, जिन्हें संत जन ने, जिन्हें महात्मा ने, जिन्हें गुरु पीर होए हैं, सारे यही समझाते हैं। पर यदि हाल आवा तां गुरु ग्रंथ साहिब दे पाछे सासन जी एक बार अदवान आपको सतनाम शिवाय, यदि हाल उस बंदे दा की है जेन मार्केट मुश्की अनाज की मन बौरा रे। एक बर्तन है उहदा छोटा जिहा गलमा है, हेठों बड़ा लंबा चौड़ा है, बंदर ने देख लिया कि इहदे विच खिल्लां पईआं ने, दाणे पए ने, उन हाथ पा लिया, हाथ पा के मुठ विच पा लिया दाणे, हुण

0: चित नानावेनाओ।
1: दौलत दाम दीवान मकान नादान, इस नादान बंदे ने सिर तोड़ सिर ते पैर रख के इन्ना सब कुछ बनाया। नादान पे मेरा हुक्म हासिल होवे, मेरे को चार कोटा भी बढ़िया हों, ते फिर इन्हां दा गुमान करी बैठा है। वाह वाह, एक ने आके कहा धर्म राजा नूं, मेरा राज सी, वो कहन लगा गलत बात है, ये तो तेरा प्यो जदों सी वह भी कहिंदा सी मेरा राज है। तेरे प्यो नूं पुछिया पे किहदा राज है, वो कहिंदा मेरा। जदों वह चल गया तो वह तो पिछली पीढ़ी देख लो, तेरे दादा भी यही गल कहिंदा सी, तेरा पड़दादा भी यही गल कहिंदा सी, तेरा नकड़दादा भी यही कहिंदा सी। पांच छह पीढ़ियां तो तेनों को आ गए, नकड़दादा पड़दादा दादा प्यो तू, ये सारे कहिंदे सी मेरा, पर तू हुण जा रहा, हुण किहदा है, हुण किहदा, तेरा नहीं है। नादान ने सारिया बातें कही, दौलत दाम दीवान मकान नादान, गुमान ना करो, एना गुमान ना करो, अस एदा ही करी जाने। राजा साहब का बचन देखो, बरसी मनाने का तां फायदा है जे असीं उन्हां दा बचन सुनीए और उन्हां दा बचन मनीए। अगली बात है जी, कहंदे जिहड़े तेरे नाल शरीक जुड़े हो ना, तेरे घर वाले, तेरे पुत्र, तीआं, रिश्तेदार, गुरु ग्रंथ साहब जी कहंदे ने पूर्व जन्म के मिले सहयोगी, पिछले कर्मां दे जिवें खूह दीआं टिंडां जुड़ियां पईआं ना, खाली तुरी जांदीआं, भर के आ जांदीआं, खाली तुरी जांदीआं, पानी डुली जांदा, ते तेरे पूर्व जन्म के मिले सहयोगी, अंते को ना।

इस धरती ते ऐसे मंत्र हन जो सप दी बिच्छू दी होर कई प्रकार दे जहरीले कीड़ियां दी जहर उतार लेंदे हन मंत्र, पर जिन्हां नू उस परमेश्वर दी प्राप्ति दी इच्छा है, जिन्हां नू बिरहों दा सप लड़ गया है, उन्हां नू बिना दर्शना तो होर कोई इलाज नहीं है। बिरहों पुयंगम मन वसै

तो जिन्हां ने भी सच्चे दिलों उस परमेश्वर की भगती की उन्होंने गुरु ग्रंथ साहब महाराज ने अपनी गोदी विच बिठा लिया। जुगो जुग अटल हो गए, अमर हो गए। भगत रविदास जी नू बचपन तो ही भगती भाव दे नाल परमेश्वर ने बेअंत बख्शिशां कीतियां होईयां सन। आप दा जन्म बेशक चंबियारां दे घर दा सी, पर निरंकार दे घर विच कोई जात पात दी पुछ नहीं, उत्थे तां गुणा दे पुजारी हन, गुणा दी पूजा होनी है। अगे जात ना जोर है, अगे जात नहीं पुछी जानी। हजूर दी बाणी कहंदी है, सब ते उत्तम गणो चंडाला, नानक जह मन बसै गोपाला। जे जात दा नीवा है ते उदे मन विच वस गया है श्री वाहिगुरु, तां ओ सब तो उत्तम है। सब तो उत्तम जाति किस दी है? सगल धर्म में श्रेष्ठ धर्म, हर को नाम जप निर्मल करम। उच्ची जाति किदी है? जेड़ा भाई सास ग्रास मालिक।

विस्तार केवन के नहीं निवल भयंगम साधे मोहे दीन हर हर आराधे तेरा भरोसा प्यारे आन न जाना वैसा कि नहीं ग्रह तजवन खंड पाया कि नहीं मोन अवधूत सदाया कोई कह तो अनन भगवती मोहे दीन हर हर ओट लीती कि नहीं कया मैं कुले वडाई कि नहीं कया बाह बहु भाई कोई कहे मैं धने पसारा मोहे दीन हर हर आधारा किन्हीं भवन

आए जदों आनंदपुर साहब दरबार विच नहीं गए, उत्थे आए जिथे धन गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह दा सोहना बाग सी, ते बाग दी सेवा कर रहा है भाई केसरा सिंह, आके चरणा विच बेनती कीती, भाई साहब कृपा करो सानू ऐसा मार्ग दसो कि साडे कोल एक सिख दी हत्या हो गई है, जो पानी मंगदा मंगदा चलिया गया, असी उहदे मुंह विच घुट पानी दा ना पाया, ते हुण असी ए अपने सिर ते पिया होया गुनाह साडा कीता होया पाप किवें बख्शिया जावे, ते सानू धन गुरु गोबिंद सिंह पातशाह दे दर्शन होण। भाई केसरा सिंह ने आख्या तुसी इसे बाग दी सेवा करो, समा आएगा तुहानू धन गुरु गोबिंद सिंह पातशाह दे दर्शन भी होण। भाई केसरा सिंह रोज अमृत वेले आ फुलां दी सोहना एक सेरा बना के लै जांदा सी, ओ सेरा माता जीतो जी जदों धन गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह दरबार विच आउंदे सन तां उन्हां दे गल विच पाया करदे सन, ओ सेरा अज सोइना बोइना ने अपने आंसुआं दे नाल परोया तैयार कीता, आख्या भाई केसरा सिंह लै जा साडी बेनती, ते पातशाह नूं कहीं साडे वास्ते की हुक्म है। जदों भाई केसरा सिंह सेरा लै के आया, ऐसे प्यार नाल गुदिया होया सेरा, जिस दे एक एक फुल ते सोइना मोइना ने पता नहीं कितने कितने अथरू डेगे हैं। जदों माता जीतो जी नूं लिया दिता, जो धन गुरु गोबिंद सिंह सच्चा पातशाह दे सुपत्नी सन, लो माता जी कहण लगे भाई केसरा सिंह अज बड़े प्यार नाल सेरा गुदिया, एडा सोहना सेरा, आख्या ये मैं नहीं गुदिया, ये कोई दो

अंतरूप मंगल सब जाके सब थोप सुनिए घर पाके राज में राज जोग में जोगी तब में तो तीसर जस्त में भोगी त्याय त्याय भक्त है सुख पाया नानक तिस पुरख का किने।

निवास खालसे मैं हूं करो निवास। खालसा मेरो मुख है अंगा, खालसे के हूं सद सद संगा, इन्हीं की कृपा के सजे हम हैं। खालसा मेरो इष्ट सुहृद, खालसा मेरो इष्ट सुहृद, खालसा मेरो कैयत बिरद, खालसा मेरो पछ अरपाता, खालसा मेरो सुख एलादा।

जेवा एक पार ना लेही। शेष रसन सारस सी बुद्ध तदप न उपमा बरनत सुध। शेष रसन सारस सी बुद्ध तदप न उपमा बरनत सुध। या मैं रंच न मिथ्या पाखी। मैं झूठ नहीं कह रहा, एक जरा पर भी, एक छिन पर भी, इदे विच मैं झूठ नहीं कह रहा, सौंख आके कहना। या मैं